आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया। दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थीं और दिल धड़क धड़क के कह रहा था कि जॉनी बेटे, तेरी मंजिल यहीं पर है। लेकिन याद रख, अगर इन्हें मालूम हो गया कि तू चोर है, उचक्का है, छोटी मोटी चोरियों के इल्जाम में बार बार जेल जा चुका है, तो इन हसीन आंखों में तेरे लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं रहेगा।

0: सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 8 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।
1: ये गंगा राम की समझ।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 9 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: रोजी, ए रोजी, रोजी पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया?
1: क्या?
0: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था तो
1: तो
0: मुझे नींद नहीं आती थी,
2: मुझे भी नहीं आती,
0: मुझे भूख नहीं लगती थी,
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती।
0: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
0: बस यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है और इस रोग की बस एक ही दवा है,
2: वो क्या?
0: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा। मारिया, रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ यो-यो?
0: देखो ना क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा। देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
1: बाय गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
3: देख यो यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल, तुझे कष्ट क्या है?
4: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है,
5: अच्छा,
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।

0: करेगा।
1: देखो जिधर मैं शोले ही शोले, दिल है आखिर कैसे न डोले। हाय

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 10 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार मिक्स मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार थीम चॉइस में सुनिए दिए गए थीम शब्द पर आधारित गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉट स्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बचाते रहो दिल से।

सत श्री अकाल, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन, आ चुका हूं लेकर आज का स्टार मिक्स मस्ती का मस्ती वाला शो। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इन पिछले हफ्ते बताया था, आज के दिन जो दोस्त मुझे व्हाट्सएप नहीं कर सकते, मतलब यानी कि रेडियो हॉटस्टार के एप्लीकेशन से वो मुझे मैसेज नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नोट, इन व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करना है, नंबर पर कॉल करना है 91 उसके बाद 3584 1232, यानी 9135 84 12 32 पे भी मुझे वो कॉल करके लाइव शो में बातें करके वो अपने गाने की पसंद भी सुन सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो कभी फरमाइश रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते हैं, उन्हें नहीं आता है, ये उनके लिए दिया गया है। लेकिन वो हफ्ता में एक दिन ही होता है, आज के दिन। वैसे फिलहाल पहले मेरे पसंद के गाने को एंजॉय कीजिए और आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

0: वेलकम बैक और रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे और नेटवर्क अभी से डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है, आप सबकी हुई असुविधा के लिए खेद है। और अगर किसी दोस्त को रेडियो हॉट स्टार में डिस्टर्ब हो रहा होगा तो प्लीज रेडियो गाना जरूर सुने। हालांकि नेटवर्क के चलते हमारी TRP कम होती जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, नेटवर्क मेरे हाथों में नहीं है, लेकिन रेडियो गाना पर फिलहाल अच्छा से प्रोग्राम चल रहा है, आप वहाँ भी सुन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और एक ही एप्लीकेशन में दोनों एप्लीकेशन मतलब दोनों रेडियो हॉटस्टार सुनने मतलब मिल जाएगा सुनने के, जैसे कि रेडियो हॉटस्टार और रेडियो गाना दोनों आप सुन सकते हैं एक ही एप्लीकेशन में, दोनों है। ओके, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस रेडियो हॉटस्टार को एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और साथ साथ रेडियो गाना का भी इंजॉय कीजिए उसी में। ओके, दोनों ऐप एक ही में मिलेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को कॉल करना है तो जैसे मैं गाना प्ले करता हूं उस समय आप मुझे कॉल ना करें, गाना खत्म होने से थोड़ी देर पहले कॉल करेंगे तो मैं आपके कॉल को रिसीव करूंगा, अदरवाइज मैं आपके कॉल को कट कर दूंगा। ओके, बिल्कुल आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि एकदम गाना स्टार्ट करते ही आप अगर कॉल करेंगे तो मैं बिल्कुल कॉल उठाने वाला नहीं हूं, मैं आपका कॉल कट कर दूंगा। ओके, फिलहाल मैं बता दूं कौन कौन से दोस्त यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सभी का वेलकम करते हैं। सबसे पहले जुड़ने वाले हमेशा की तरह मैं सरफराज यानी सरफू भाई, बहुत बहुत वेलकम है, वेलकम सलाम। और उनके बाद है काजल झक्का जी, वेलकम है काजल झक्का जी। और हुकुम चंद जांगर जी हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। साथ ही साथ यहाँ पे सुनीता गोप जी हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और मीना इब्राहिम जी जुड़ चुके हैं US से, वेलकम करते हैं आपका भी। और हमें सर्वेश भगत जी, वेलकम करते हैं आपका भी। MD फैज आलम जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और जाकिर खान जी हैं, बहुत बहुत वेलकम है। अशोक देशमुख जी हैं, सभी का वेलकम करते हैं। और प्रोग्राम का आगाज करते हैं आज के सबसे पहला गाना MD फैज आलम जी के, और क्योंकि भाई शाम है धुआ धुआ तो एंजॉय कीजिए इनके गाने को। ये सुना रहे हैं फिल्म दिल जले का लाजवाब गाना शाम है धुआ धुआ, एंजॉय द ट्रैक।
1: राख के ढेर में चलते हुए शोलों को हाथ मत लगा, चल जाएगी।
2: नाम मेरा शबनम है पर आग तो मैं भी हूं शाखा।
3: दिल जले और लाले, यहां तो सभी दिल जले हैं।

कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

बिल्कुल शाम है, धुआं धुआं और सभी जुड़े हैं, सभी का वेलकम करते हैं। और गोविंदा खंडादे जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और शेख मोहम्मदीन ताहिर जी लिखते हैं कि ये सफर मोहब्बत का कभी खत्म ना हो, सफर मोहब्बत का कभी खत्म ना हो, हर मोड़ पर सिर्फ तेरा ही दीदार हो। यूं तो महफिलें सजती हैं हजार शहरों में, यूं तो महफिलें सजती हैं हजार शहरों में, पर दिल को सुकून मिले जब तू पास हो। अय है क्या बात है। और एमडी फैज लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरा गाना प्ले करने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे मोहन हमारे जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और मीना जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत ये नगमा है, थैंक यू सो मच एमडी फैज आलम जी। इसी बात पर अगला जो मैं डिमांड प्ले करने वाला हूँ वो राजेश कुमार जी ग्रेटर नोएडा हबीबपुर से सुनना चाहते हैं। मस्त मस्त, एंजॉय द ट्रैक।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और यहाँ पे एमडी फैज जी लिखते हैं कि वाह क्या बात है, मजा आ गया भाई, इस गाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हमारे शेख मोहम्मद ताहिर जी लिखते हैं मस्त कुड़ी वाला गाना डांस करने को मिल गया, थैंक यू सो मच। और पूजा भास्कर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं पूजा भास्कर जी। साथ ही साथ संध्या पटेल जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग है, वेलकम है दीदी आपका भी। सरभजीत जी लिखते हैं कि अमन सर जी नमस्ते, हम भी जुड़ गए आपके प्रोग्राम से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और मीना जी लिखते हैं बहुत ही शानदार डिमांड, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। इसी बात पर अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ, हम अपने मतलब सरफराज जी का, यानी कि सरफू भाई का सुनना चाहते हैं ये गाना, आई एम द बेस्ट। इंजॉय।

बिल्कुल आई एम द बेस्ट और जुड़ चुके हैं मिसाल अंगद जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, बहुत दिन बाद जुड़े हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और मोहन निवारी जी लिखते हैं कि सुपरहिट गाना है, और विजय राज जी लिखते हैं कि सर जी नमस्कार, और सर जी आपके लिए शायरी है कि उसके साथ रहते रहते हमें चाह सी हो गई, लिखते हैं कि उसके साथ रहते रहते हमें चाह सी हो गई और उससे बात करते करते हमें आदत सी हो गई, एक पल भी ना मिले तो न जाने ये कैसी बेचैनी सी रहती है, और दोस्ती निभाते निभाते हमें मोहब्बत सी हो गई। आए है क्या बात है विजय राज जी। और जुड़ चुके हैं यहाँ पे इन प्रियंका जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं प्रियंका जी। और एमडी फैज जी लिखते हैं कि जी बिल्कुल शानदार गाना है, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए भी। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग है बिल्कुल। और बबीता जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं बबीता जी भी। तो इसी बात पर अगला जो डिमांड प्ले करना चाहता हूँ मैं, वह है मीना इब्राहिम जी का, सुनना चाहती है तेरी दीवानगी। एंजॉय द ट्रैक।

0: वेलकम बैक और फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं। क्या कहते हैं
1: आरजे अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। हिना इब्राहिम जी अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी भाई और सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल किए, सभी को भी धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं,
0: थैंक यू जी आपका भी। और मीना जी लेते हैं मेरे रिक्वेस्ट को प्ले करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया है। और राजेश कुमार जी लिखते हैं कि अमन सर जी गुड इवनिंग और थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। साथ ही साथ हमारे सरफू भाई सरफराज जी लिखते हैं कि थैंक यू भाईजान, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ जुड़ चुके हैं आमना खान जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम और वेलकम है आपका भी। अर्शद जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि वेरी गुड सॉन्ग है। अच्छा, इसी बात पर अगला जो गाने की डिमांड है हमारे संदीप सुतार जी का है, सुनना चाहते हैं क्या, ये पिंकी सुनना चाहते हैं, तो पिंकी इंजॉय कीजिए।
2: हेलो हेलो हेलो साहिबा कदरदार,
3: मियां माइक में घुसे जाओगे क्या?
4: नौटंकी बंद करो, पिंकी आ रही है।

बिल्कुल, यानी कि पिंकी है पैसे वालों की और बेस्ट फीडबैक भी है। संध्या जी लिखते हैं कि अमेजिंग सुपर सॉन्ग है, थैंक यू सो मच। एंड अपनी फैज जी लिखते हैं कि एकदम झक्कास और प्यारा गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मिथिलेश पवार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और मोहन हमारे लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत पसंद है। संदीप सुतार जी आपका, मंगेश दशमुख जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं, जी जी वेलकम है आपका भी मंगेश दशमुख जी। साथ ही साथ बबीता जी लिखते हैं कि नमस्ते अमन सर जी, मैं भी जुड़ी और गाना अच्छा लग रहा है, ओके जी। और अमीना जी लिखते हैं कि बहुत बहुत ही शानदार गाना सुनने को मिला, धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। इसी बात पे अगला जो डिमांड है मैं सुनवा रहा हूँ, ये भी यानी बम्बे का जिक्र है इसमें, इसलिए इस गाने को मैं प्ले कर रहा हूँ। एसके मोहम्मद ताहिर जी का, यानी शेख मोहम्मद ताहिर जी, सुनना चाहते हैं बम्बई से रेल चली। ओहो क्या बात है, जालिम मिले यानी फिल्म का ये बहुत ही प्यारा गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, बम्बई से रेल चली। एंजॉय द ट्रैक।

0: खूबसूरत का दीदार
1: बिल्कुल दिल्ली आने से पहले प्यार हो गया। क्यों, कभी आपके साथ ऐसा मतलब कोइंसिडेंस हुआ है? अगर हुआ होगा तो जरूर बताएं मुझे। और शेख मोहम्मद ताहिर जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, हमेशा जी आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बम्बई से रेल चली वाला लाजवाब डिमांड, थैंक यू सो मच। MD5 जी लिखते हैं कि जी एकदम जबरदस्त गाना, मजा आ रहा है सुन के। और यानी कि प्रियंका जी लिखते हैं कि ये कहाँ से लाते हैं इतना इतना गाना, अच्छा अच्छा मैं तो यानी कि पहली बार सुन रही हूँ ये गाना, मुझे अच्छा लगा। ओके जी, इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ, ओके, और इसी बात पर अगला जो मैं डिमांड प्ले करने वाला हूँ आमना खान जी का। आमना खान जी एंजॉय द ट्रैक।

और मेरे पास यहाँ पे फीडबैक बहुत सारे आए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे मीना जी लिखते हैं, वाव क्या बात है, क्या गाना है, सुपर सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच। और प्रियंका जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग है। और आमना खान लिखते हैं कि वाव थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। साथ ही साथ राजेश कुमार लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है ये। और एमडी फैज जी लिखते हैं कि वाह क्या मस्त गाना है, धन्यवाद देते हैं। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग है। और आज मेरे सभी दोस्त पता ना कहाँ गायब है, मुझे मैं आज सभी को मिस कर रहा हूँ। ओके, फिलहाल अगला जो डिमांड है हमारे जाकिर खान जी का है, सुनवाता हूँ, इंजॉय द ट्रेक।

0: बहाना कोई कर देना बहाना कोई प्यार में ये सब चलता।
1: और एक फोन आया हुआ है, इनसे बातें करते हैं। जी बहुत बहुत आपका वेलकम है रेडियो हॉटस्टार में, आपका शुभ नाम बता दीजिए प्लीज।
2: धर्मेंद्र मोहन भारती।
1: धर्मेंद्र मोहन भारती जी, और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: हम आपके आकांक्षा मैडम।
1: अच्छा,
2: के शहर से।
1: ओके आकांक्षा मैडम गोंडा से बात कर रहे हैं। बहुत बहुत वेलकम है सर जी आपका गोंडा शहर से, बहुत बहुत वेलकम है। और आप हमें सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बताइए आज क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
2: फूलों ने छुआ मुझे कुछ ना हुआ।
1: फूलों
2: कांटों ने छुआ मुझे कुछ ना हुआ।
1: अच्छा, फूलों ने छुआ मुझे कुछ ना हुआ,
2: कांटों ने छुआ मुझे कुछ ना हुआ, जब तूने छुआ मुझे यार।
1: तो यानी ये फिल्म का नाम बता दीजिए।
2: फिल्म का अमिताभ बच्चन है शायद इसमें।
1: फूलों ने छुआ कुछ ना हुआ। एक मैं अभी ढूंढता हूँ। छुआ कुछ ना हुआ, अब बिल्कुल हो सकता है कि आपका गाना मुझे मिल जाए। हाँ गाना तो मुझे मिल रहा है शायद।
2: फिल्म में अमिताभ बच्चन ने गाया है
1: लेकिन
2: दिलेर मेहंदी के साथ।
1: अच्छा, यानी कि मित्रदाता का साथ मेरे ख्याल से गाना है।
2: हाँ मित्रदाता।
1: ओके जी, कोई बात नहीं, मैं गाना को जरूर सुनवाऊंगा आपको।
2: और सर कैसे हैं आप?
1: जी हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
2: ठीक है, आपकी आवाज भी सुनने के लिए तरस रहा था।
1: ओ माय गॉड,
2: मैडम से मांगा था ना आपको।
1: अच्छा,
2: आठ स्टार।
1: ओके,
2: उन्होंने कहा कि ज्वाइन कर लो। तो सुनने को वहाँ से तो हमेशा गाने ही मिलेगा आपको।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं फिलहाल आपको आपकी पसंद का मैं ये गाना सुनवा रहा हूँ, एंजॉय कीजिए, है ना।
2: थैंक यू वेरी मच।

0: पसीना हुआ।
1: मौजों ने छुआ मुझे कुछ ना हुआ,
0: बिल्कुल कुछ ना हुआ,
1: पर तूने छुआ जब यहाँ।
0: हाय हाय क्या बात है।

0: वेलकम बैक। सच में ये गाना मैं पहली बार सुना हूँ, मुझे अच्छा लगा और बहुत बहुत आपका शुक्रिया कॉल करने के लिए। इसी बात पर ये फीडबैक शामिल करता हूँ।
1: बहुत मजा आ रहा है सर सॉन्ग सुनने में।
0: अच्छा,
1: रेडियो हॉट स्टार,
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और साथ ही साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पे रवि जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं रवि जी आपका भी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
2: अजय अमन सर जी, जाकिर खान जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी।
0: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और संजय पटेल जी लिखते, वाह क्या गाना था जाकिर जी का, मजा आ गया सुन के। और बबीता जी लिखते हैं कि जाकिर जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई थी। और अजय भगत जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं अजय भगत जी। गजानंद जी लिखते हैं कि नमस्कार मनसर जी, हम भी जुड़ गए, बहुत बहुत वेलकम है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि जाकिर जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच। एम डी फाइव जी लिखते हैं कि वाह बहुत खूबसूरत गाना था, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और इसी बात पर हमारे राजेश कुमार लिखते हैं कि बहुत ही सुपर सॉन्ग है। ओके, जाकिर खान लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन सर जी मेरे ट्रैक को प्ले करने के लिए। और दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और नंदलाल यादव जी गाजीपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो है हमारे अभिषेक तिवारी जी का, इंजॉय द ट्रैक।

0: बिल्कुल अगर किसी को कॉल करना है तो वो गाने के मैंने खत्म होने से पहले करेंगे तो मैं उनका कॉल जरूर रिसीव करूंगा। अगर गाना स्टार्ट किया और तभी कॉल करेंगे तब तो कॉल रिसीव मैं नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए सॉरी। फिलहाल फीडबैक है हमारे पास, रणवीर सिंह जेठालाल जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। और संजय पटेल जी लिखते हैं वाह एक नंबर सॉन्ग सुनने को मिल गया, मजा ही आ गया सुनकर। फैज जी लिखते हैं वाह ये भी शानदार गाना है। एक यहाँ पे कॉल आया हुआ है, मैं अभी कॉल रिसीव करने वाला हूँ। अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। लिखते हैं अभिषेक तिवारी जी गाना अच्छा लगा जी, बहुत बहुत वेलकम है रेडियो हॉट स्टार में, आपका शुभ नाम बता दीजिए प्लीज।
1: मोहम्मद जमीरुल
0: जी बहुत बहुत वेलकम है आपका रेडियो हॉट स्टार में, और कैसे हैं?
1: ठीक है, आप अपना सुनाइए।
0: एकदम दुआएं हैं आपकी, बस
1: आपका एक चैनल और खुल गया है।
0: एक चैनल बहुत दिन से खुला हुआ है, वो रेडियो गाना ना बहुत दिन से है जी। एक्चुअली वो सिर्फ यानी कि ओल्ड गाने के लिए है, मतलब उस पर सिर्फ ओल्ड गाने दिन भर प्ले होते रहते हैं जिनको, और ये जो रेडियो हॉट स्टार है इसमें हर तरह गाने सुनने को मिलेंगे, लेकिन रेडियो गाना पर सिर्फ आपको ओल्ड गाने ही सुनने को मिलेंगे।
1: नहीं तो मैं सुबह शाम तक इसी को लगा के सुनता।
0: अच्छा चलिए अच्छी बात है। फिलहाल आज क्या सुनना पसंद करेंगे
1: आप? भोजपुरी दरार मूवी का
0: वो कौन सा
1: गाना सुना दीजिए, आँखियों से।
0: मतलब आँखियों से
1: आँखियों के पास रहे थे,
0: आँखियों के पास
1: रहे थे।
0: अच्छा देखता हूँ मैं अभी। शायद यही गाना है।
1: अमन भाई
0: जी मैं ढूंढ रहा हूँ इसको गाने को
1: जी। अमन भाई मैं ये कह रहा था
0: जी जी,
1: ये फरमाइशी वाला प्रोग्राम सिर्फ एक ही दिन होता है हफ्ते में, मंगलवार को ही
0: जी। वो मंगलवार को नहीं, ये मतलब इन बुधवार को होता है।
1: हाँ वही बुधवार को
0: जी जी जी जी जी। ये मतलब ये चूंकि एक्चुअली ये मतलब उन लोग के लिए है ना कि जो लोग ना कभी मतलब उनको इन मैसेज भेज नहीं सकते हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये रखा गया है कि वो लोग मुझे फोन करके हमसे बात कर सकते हैं और गाने को सुन सकते हैं।
1: हाँ तो हम लोग भी उसी में थे।
0: ओके तो चलिए इंजॉय कीजिए, गाने को सुनवा दूँ
1: जी जी
0: ओके।

0: बिल्कुल अखियन के पास रहे था। मजा आ गया सुन के गाना। राजेश कुमार लिखते हैं कि बहुत ही भोजपुरी गाना, लाजवाब लागल, मजा आ गया सुन के एकदम। और रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि अच्छा ओके। और रवि जी लिखते हैं कि आपकी याद आती है तो आंखें भर आती हैं, आपकी याद आती है तो आंखें भर आती हैं, और आपकी आपकी कमी हर पल मुझे तड़पाती है। और कैसे कहें कि आपके बिना कैसे जी रहे हैं, कि कैसे कहें कि आपके बिना कैसे जी रहे हैं, ये उदास शामें अक्सर आपकी याद दिलाती हैं। और एमडी फैज लिखते हैं कि वाह सुपर गाना सुनने को मिला, मजा आ गया सुन के। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि वाह क्या बात है, क्या गाना है, मजा आ गया, थैंक यू सो मच। और मोहन वाले लिखते हैं कि सुपर प्रोग्राम चल रहा है, थैंक यू सो मच। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: मान सर जी, सभी भाई और सभी बहन अपने अपने गाने में सम्मिलित करते हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं जी।
0: और इसी बात पर, चूंकि अखियन के बाद जब यानी कि चल गल बताइए गाना और सुन लिया जाओ नंदलाल जी के।
2: नमस्ते अमन सर, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग,
2: मैं नंदलाल यादव गाजीपुर यूपी से।
0: जी वेलकम जी।
2: सर मुझे भी एक भोजपुरी गाना सुनना है।
0: हाँ हाँ बता दीजिए।
2: जय मेहरारू जय ससुरारी मूवी से।
0: अच्छा अच्छा।
2: आवाजें उसमें उदित नारायण और इंदु सोनाली की है। अच्छा। और गाने के बोल है।

0: वाला
1: अच्छा।
0: मन के गति पर लागे न ताला ऐसे नाची नचावे हो अखिये दिल में नहीं जगावे।
1: क्या बात
0: सर, गाने का बोल यही है
1: okay.
0: और ये गाना आपको और आपकी सुंदरता की मूरत को
1: so
0: और जितने मेरे दोस्त सुन रहे हैं सभी के लिए गाना
1: देखिए।

0: बिल्कुल, अगर अगर यानी कि किसी के दिल में उतरना है तो उसकी आंखों से होकर ही वो आपको उतरना पड़ेगा, क्योंकि जब आंखें आंखें दो आंखें यानी चार होती हैं, आंखों से आंखें मिलती हैं तो वो दिल को चुरा लेती हैं बस, और दिल में बस जाते हैं एक दूसरे को देखकर, है कि नहीं। आंखें बहुत कुछ कमाल कर जाती हैं। फिलहाल ये फीडबैक सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, नंदलाल यादव जी अपने गाने में शामिल किए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी।
0: जी ओके जी। और मोहन हमारे जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार फरमाइश चल रही है। और राजेश कुमार लिखते हैं कि भाई नंदन लाल जी की पसंद बहुत ही निक लागल, मजा आ गया सुन एकदम। और अभी जी लिखते हैं कि भोजपुरी स्पेशल पर यानी कि चेहरा देख के दिल बेकरार हो जाला, ये लिखते हैं कि चेहरा देख के दिल बेकरार हो जाला और तोहरा एक ही नजर में तो प्यार हो जाला, अन्ना जाने वो कौन सा जादू पर तोहार ए सनम कि तोहरा से कि मिले खाती हाल पर इंतजार हो जाला। आए है क्या बात बा भाई, मजा आ गया सुन के। और रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि ये भोजपुरी गीत बहुत अच्छा लगा। इसी बात पे अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ, हमारे सर्वजीत सेठी जी, और तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब ऐसी चाहत झलक रही है, इंजॉय कीजिए।

बिल्कुल तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। और फीडबैक भी आए हुए हैं यहाँ पे, मुबारक हुसैन जी लिखते हैं कि गजब गजब का गाना नंदलाल यादव जी, भैया तुम्हारा गाना सुन के तो हमारे हमके बहुत ही नीक लागल, मजा आ गया सुन के।

0: बिल्कुल धड़क रही है और यहाँ पे अनंत लाल जी क्या कहते हैं?
1: गाना सुन के मजा आ गया अमन सर, और जितने भाई हमार फीडबैक दिए हैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत आभार बा, धन्यवाद।
0: ओके जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और यहाँ पे जाकिर जी ने अपना दूसरा गाना भेज दिया है, अखिया में कौन जादू छुपा के तू रखले वड़वाए है, क्या गाना है भाई। लेकिन पहले यानी कि काजल झका जी के गाने के बाद ही मैं आपके गाने को प्ले कर पाऊंगा, क्योंकि अगला गाना काजल झका जी का ही आने वाला है। और ये फीडबैक
2: जी अमन सर जी, सरबजीत सेठी जी अपने गाने में शामिल किए हैं, धन्यवाद देते हैं जी।
0: ओके जी, वेलकम है आपका जी। और यहाँ पे रवि जी लिखते हैं कि सूरज चांद तो रोजे उगेल आसमान में, लिखते हैं कि सूरज चांद तो रोजे उगेल आसमान में, अब पर हमार चांद तो बस इन तोहरा मुस्कान में बा, सब केहू ये कहेला कि दुनिया बहुत खूबसूरत बा, कि सब केहू ये कहेला कि दुनिया बहुत खूबसूरत बा, अब पर हम तो कहनी कि दुनिया तो तोहरे यानी के कि चेहरे में स्माइल बा। आय हाय हाय, क्या बात है भाई, इसमें अच्छा स्माइल में स्माइल बा। ओके ठीक बा, ओके समझ गए नहीं। और मोहन वाले लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना सुनने को मिला, मजा आ गया सुन के। और राजेश कुमार लिखते हैं कि सरबजीत जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई है। एमडी फैज जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, थैंक यू सो मच सरबजीत सेठी जी। और काजल झका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। और रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि ये मुरादाबाद से हैं कि तुम्हारी नजरों में हमने देखा, बहुत ही अच्छा गाना लगा है, मजा आ गया सुन के। दत्ता करम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया फरमाइश जी, इसी बात पर अगला जो डिमांड है काजल झक्का जी का है, क्या कहती है जरा सुन लीजिए।
3: बहुत दूर मगर बहुत पास रहते हो, बहुत अच्छा। दूर मगर बहुत पास रहते हो, आंखों से दूर मगर दिल के पास रहते हो, आंखों से दूर मगर दिल के पास रहते हो, मुझे बस इतना बता दो, मुझे बस इतना बता दो, क्या तुम भी मेरे बिना उदास रहते हो, क्या तुम भी मेरे बिना उदास रहते हो। नमस्ते, गुड इवनिंग आपको रेडियो हॉट स्टार सुनने वाले सभी दोस्तों को, नमस्ते गुड इवनिंग। मैं काजल बोल रही हूँ सीतामढ़ी बिहार से, मुझे भी एक सॉन्ग सुना दीजिए, सॉन्ग मैं भेज दे रही हूँ और ये सॉन्ग मैं सुना दूंगी सबसे पहले मिठू मियाँ जी को, अमन जी आपको, वंशिका जी को, जितने दीवाने दीवानियाँ सुन रही हैं

0: बिल्कुल फीडबैक बहुत सारे आए मेरे पास आए हुए हैं यहाँ पे सर्वे जी, यहाँ पे सर्वे भगत जी क्या कहते हैं
1: जी? अमन सर जी, काजल झा जी अपने गाने में शामिल किए हुए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी।
0: जी जी धन्यवाद देते हैं आपको भी। और यहाँ पे दाता जी लेते हैं, काजल जी का गाना मुझे बहुत झक्कास लगा है, सुपर हिट लगा है। अशोक देशमुख जी लेते हैं कि काजल जी के पसंद एकदम झक्कास लगी है, और गीत में शामिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है उनको। मोहन हमारे जी लिखते हैं कि शानदार पसंद चल रही है, और रविंद्र सानू जी लिखते हैं कि नंदलाल जी का भोजपुरी और काजल जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है, और मैं भी सुन रहा हूँ कार्यक्रम को। और ओके जी, तो बहुत बहुत वेलकम है। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब गाना है, और राजेश कुमार लिखते हैं कि काजल जी के पसंद बहुत ही सुपर सुपर सुपर सुपर लगा है। एमडी फैजी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग के लिए काजल जी को बहुत बहुत शुक्रिया, और ये फीडबैक।
2: गाना सुन के तो अमन सर बहुत मजा आ गल, काजल झकास जी का गाना एक नंबर का चॉइस, पसंद करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और पागल का दहला प्यार में ना, पागल का दहला काजल जी की शायरी पर, बहुत मजा आ गई गाना सुन के, पसंद करे खातिर उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और जाकिर खान जी
2: नंदलाल यादव गाजीपुर यूपी से।
0: ओके, और जो हमारे यानी जाकिर जी जो विनर बने थे उन्होंने अपना गाना भेजा है, अभी प्ले कर देता हूँ। इसके बाद से अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ।
3: संसार से सुनर सिंगार सहज सुहाला, तू जब ताके लो तो तुहसे
0: मोहब्बत हो जाला,
3: मोहब्बत हो जाला।

0: अच्छा सच में का गोपाल परिदार जी लिखते हैं कि सर जी कार्यक्रम बहुत शानदार चल रहा है, थैंक यू सो मच। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड, मजा आ गया सुनकर। और ये फीडबैक सुनते हैं क्या कहते हैं।
1: हेलो अमन सर जी, बॉलीवुड मिक्स मस्ती में हम भी जुड़ चुके हैं आज के शो रेडियो हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना।
0: बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और नंदलाल जी क्या कहते हैं।
2: जाकिर खान का गाना बहुत लाजवाब लगा, पसंद करे खातिन उनके बहुत बहुत धन्यवाद बा। और रविंद्र साहनी जी, इतने दिन कहाँ थे आपका कुछ पता नहीं चल रहा था, चलिए कहीं भी थे अच्छे थे और प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत वेलकम है। बहुत दिनों के बाद आप जुड़े हैं, आपका नाम सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और बहुत सब्री से इंतज़ार था आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नंदलाल यादव गाजीपुर यूपी से।
0: ये खाली मतलब ये मैसेजे करते हैं या अपना वॉइस नहीं भेजते हैं। ओके, और ये फिर सुनते हैं।
3: धन्यवाद अमन सर जी, आपने मेरा गीत चलाया और जिन्होंने मेरे गाने पर फीडबैक दिए उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है और सभी गीत लाजवाब चल रहे हैं, तो सुनते रहे रेडियो होस्ट चार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सर्वजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
0: धन्यवाद आपका भी। और एमडी फैजी, वाह क्या जबरदस्त गाना है, सुनकर दिल खुश हो गया है। बहुत बहुत गाने को सुनकर तो मजा आ गया। इसी बात पर अगला जो डिमांड है एमडी यानी नाजिम जी का है, सुना चाहते हैं ये गाना, सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं। एंजॉय कीजिए नाजिम जी।

0: तेरी ओर, सिर्फ तेरी ओर, मोहन वाली लिखते हैं सुपर हिट गाना के लिए धन्यवाद देते हैं। और जागीर खान जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। साथ ही साथ आमिना खान जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग। एम डी फैजी लिखते हैं कि जी बिल्कुल बहुत ही प्यारी डिमांड है। एम डी नाजिम भाई मजा आ गया सुन के। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि सुपर चॉइस। साथ ही साथ काजल झक्का जी क्या करते हैं सुन के,
1: आदत भी हो और जरूरत भी हो तुम, आदत भी हो और जरूरत भी हो तुम, जैसी भी हो सिर्फ मेरे हो तुम, जैसे भी हो सिर्फ मेरे हो तुम।
0: क्या बात है,
1: थैंक यू थैंक यू थैंक यू अमन जी गाना बजा देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको और सभी दोस्तों को भी बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। सभी दोस्तों का गाना बहुत अच्छे अच्छे बज रहे हैं, मैं भी सुन रही हूँ। काजल सीतामढ़ी बिहार से, और आज का प्रोग्राम बोलेंगे तो झक्कास।
0: ओके, अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ, अजय भगत जी का दिल तुझ पे आ गया, सुनना चाहते हैं दिल है कि मानता नहीं।

0: और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग रात 10 बजे आरजे आकांक्षा जी का प्रोग्राम सुनना न भूले, जरूर सुने और उनका हौसला अफजाई जरूर करें। अशील भाई बहन जी लिखते हैं कि ये तेरी वर वाला गाना मुझे बहुत पसंद आया है, ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: आदरणीय आरजे अमन सर जी,
0: जी जी,
1: राजू यादव ग्राम उपरहका श्रीरामपुर डेरा सरीला राठ मुस्का हमीरपुर बुंदेलखंड
0: जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका।
1: समय आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ और हमारे यहाँ मौसम एकदम रंगीला है क्योंकि बारिश हो चुकी है,
0: यहाँ बारिश हो रही है। ओके धन्यवाद आपका भी। और जाकिर खान लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत आंखें हैं तुम्हारी, बहुत खूबसूरत आंखें हैं तुम्हारी, इन्हें इन्हें बना दो किस्मत हमारी, नहीं चाहिए जमाने की खुशियां, नहीं चाहिए जमाने की खुशियां, अगर मिल जाए मुझे मोहब्बत तुम्हारी, आए है मुझे मिल जाए मोहब्बत तुम्हारी। इसी बात पगला जो गाना डिमांड है हमारे दत्ता करम जी का है, इंजॉय द ट्रैक।

बिल्कुल मैंने तुमसे प्यार किया। और दोस्तों एक चीज और बता दूं कि रेडियो हॉटस्टार के ये लाइव चैट का फीचर्स आया हुआ है, आप उसमें लॉग इन करके उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। आप उसमें दोस्तों से बातें कर सकते हैं, आपका नंबर कोई शेयर नहीं करेगा, कहीं आपका नंबर जाने वाला नहीं है, कोई आपका नंबर देखेगा नहीं, बस आप अपने दोस्तों से बेशुमार बातें कर सकते हैं। आपको ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे मैसेज आएंगे तो आपका आपका स्टोरेज फुल हो जाएगा, आपका स्टोरेज कोई फुल नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भी होगा सब हमारे यानी वेबसाइट पर रहेगा, आपको कुछ नहीं होने वाला है। दत्ता जी लिखते हैं कि धन्यवाद अमन सर जी, गाना मेरा प्ले कर दिया है। और एमडी फैजी लिखते हैं कि जी बहुत ही खूबसूरत डिमांड है दत्ता जी का। और गजानंद जी लिखते हैं कि मैं तेरी तू ये वाला गाना अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और आमना खान लिखते हैं कि जी वह यानी कि हमारे फैज भाई हैं उसमें बहुत ही धमाल मचाए हुए हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। ओके इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ। ये पसंद है यानी कि नाम है सिया जी, और सिया जी एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

बहुत ही गाना निक लगल बा। और इस्माइल खान लिखते हैं कि सर जी लाइफ जैकेट कहाँ पर मिलेगा? जी जी, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप रेडियो हॉटस्टार के एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं तो आपको मोर में मिलेगा लाइव चैट का ऑप्शन, वहाँ से दोस्तों से खुलकर बातें कर सकते हैं। राजेश कुमार लिखते हैं कि बहुत ही गाना निक लगल, धन्यवाद देतनी हम सिया जी के। और संजय पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे हुकुम चंद जांगड़ जी का कोटा राजस्थान से, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

और बता दूं कि अगर कोई हमें फोन करना चाहता है तो अभी मेरे नंबर पे 9135841232 9135841232 पे मुझे कॉल करके अपने अभी कोई भी गाना सुन सकता है। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो लोग मुझे यानी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज नहीं सकते हैं, वो मैसेज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उनके लिए है जो सिर्फ मुझे कॉल कर सकते हैं।

0: वेलकम बैक और फीडबैक सुन लेते हैं, क्या कहते हैं सर्विस जी?
1: आरजे अमन सर जी, हुकुम चंद जांगर जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सभी को भी अपने अपने गाने में शामिल किए, सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर।
0: वेलकम जी। और यहाँ पे अमीना खान जी लेते हैं जी, बहुत ही चालाक कुड़ी है जी, बिल्कुल सही में आपने कहा। राजेश कुमार लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब चॉइस है। और हमारे गजानंद जी लिखते हैं हुकुम चंद जागर जी के पसंद बेहतरीन लगे। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे सर्वेश भगत जी, अशोक देशमुख जी, असलम और क्या नाम है हमारे वो सैयद यूनुस जी और आत्माराम पाटिल जी, इन सभी की डिमांड है। और क्या डिमांड है जरा बताता हूँ, सुनिए।
2: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार।
2: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी।
2: आज का थीम है स्टार बॉलीवुड मिक्स मस्ती। तो मुझे एक मस्ती भरा गीत सुनना है। फिल्म का नाम है फना और गाने का बोल है चंदा चमके चम चम। ये गीत सबसे पहले मैं आपको और आपकी सुंदरता की मूरत को और जितने भी हॉट स्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
0: ओके। और सर्वेश भगत जी।
1: आरजे अमन सर जी, सुसंध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है फना और गाने का बोल है चंदा चमके चम चम, चीखे चौकन्ना चोर, यही गाने गाना है। हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत अजरदहा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, वर्षकिशोर भगत, आनंद शेखर, आनंद प्रकाश, सुनील कुमार, मुनि कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख जी, सैयद यूनुस जी, आत्माराम पाटिल जी, आरजे अमन सर जी, सुंदरता की मुनि जी, आरजे रत्ना जी, आरजे वंशिका जी, आरजे एम एस परमार जी और सभी आरजे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर्स में शामिल, सभी को सुना दीजिएगा। जयराम जी की अमन सर जी।
0: और सर्वेश भगत जी, आरजे आकांक्षा जी का भी सुनिए, उनका भी प्रोग्राम।
3: अस्सलाम वालेकुम आरजे अमन सर जी।
0: वालेकुम सलाम।
3: मैं अष्टी जिला जालना महाराष्ट्र से सैयद यूनुस बात कर रहा हूँ सर जी। और आज मिक्स मस्ती, उसी मौके पर एक गीत लेकर आया था सर जी मैं। और आज है बॉलीवुड की फिल्म अभिनेत्री काजल का जन्मदिन भी है सर जी।
0: अच्छा।
3: तो उसी मौके पर एक सॉन्ग लेकर आया था सर जी मैं। फिल्म का नाम है फना और गीत के बोले चंदा चमके चम चम के खींचे चन्ना चोर, ये गीत की बोले सर जी।
0: ओके।
3: और इसमें का एक मुखड़ा है सर, वो जरूर सुनवाना, वो है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह।
0: अच्छा।
3: ये है सर। और इस गीत के साथ मेरे कुछ चंद लोग हैं। सबसे पहले तो है आरजे अमन सर जी, आप।
0: ओह थैंक यू सो मच
3: जी। वेलकम सर, आपकी सुंदरता की मूरत है सर जी।
0: हाय थैंक यू उनके लिए भी
3: जी। वेलकम। और आरजे वंशिका जी, दशरथ सागुट
0: बोलिए। आपने एप्लीकेशन अपडेट नहीं किया, पहले एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए सर जी, क्योंकि आपका एप्लीकेशन अपडेट नहीं है। जरूर कीजिए अपडेट। एंजॉय द ट्रैक।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। बोलो
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा
2: जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका रेडियो हॉट स्टार में। क्या नाम है आपका, शुभ नाम बता दीजिए प्लीज।
3: नरेंद्र मिश्रा बोल रहा हूँ सर, बलरामपुर छत्तीसगढ़ से।
2: बहुत बहुत वेलकम करते हैं नरेंद्र मिश्रा जी। और क्या कर रहे हैं
3: सर? मैं पत्रकार हूँ।
2: अच्छा,
3: समाचार बनाते हैं।
2: बहुत बहुत आपका वेलकम करते हैं रेडियो हॉटस्टार में, बहुत स्वागत है आपका।
3: सर आपका आवाज बहुत प्यारी है, आपके आवाज के दीवाने हैं हम।
2: ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, हौसला अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बताइए
3: सर, हम जब पढ़ रहे थे सर, तब उसमें मेरे को धर्मकांटा फिल्म के देखने गए थे, उसमें मार पड़ा था, तो उसी गाना को सुनवा दीजिए।
2: ऐसे बताइए वो कौन सा गाना?
3: वो ट्रेन में नहीं गाती है,
2: ये
3: छुरिया चल जाएगी,
2: ये गोटेदार लहंगा, है ना, है ना। ओके
3: जी सर,
2: एंजॉय कीजिए गाने को।
3: जी सर,
2: सुनवा दिया।
3: जी सर, धन्यवाद सर।

0: और एक और कॉल आ रहा है, जरा उठाते हैं इनकी भी। जी बहुत बहुत आपका वेलकम है रेडियो हॉटस्टार में, आपका शुभ नाम बता दीजिए प्लीज।
1: सर मेरा नाम सुरेंद्र पर बोला,
0: जरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक जगह अगर आप यानी कि गाड़ी पे हैं तो एक जगह रुक जाइए प्लीज, शांति जगह में, ताकि आवाज स्पष्ट रूप से आपसे आ सके। जी अब बताइए
1: सर। अब हाँ जी, मेरा नाम सुरेंद्र पाल और भोला
0: भोला
1: कोटपुरा से बात कर रहा हूँ।
0: हाँ, पंजाब से करते हैं आपका। हाँ,
1: थोड़े दिन पहले आपका सुना प्रोग्राम, बड़ा बढ़िया लगा अंदाज आपका।
0: थैंक यू सो मच।
1: जैसे साथ साथ आप गाते हैं ना, मैं भी गाता रहता था।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो मैं सोच रहा हूँ, पहले मेरी वाइफ सोचती थी दो है गाने वाले, एक रेडियो और एक तुम, और तीसरा ये भी आ गया।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: अच्छा सर, एक थोड़ी फरमाइशी पूरी करेंगे।
0: हाँ हाँ बताइए।
1: वो है मुखड़ा चांद का टुकड़ा।
0: अच्छा।
1: तेरे नैन शराब के प्याले, बड़ा बढ़िया गाना है।
0: जी जी,
1: तो
0: अच्छा गाना है। आप
1: हाँ ठीक है सर, जब ठीक लगे तो बजा देना।
0: अरे एकदम, हम अभी बजा देंगे, लेकिन बताइए आप यानी कब से सुनते हैं रेडियो हॉटस्टार?
1: देखो करीब मेरे को 10 दिन हुए सुनते रहे हॉटस्टार को।
0: अच्छा, 10 ही दिन हो रहा है।
1: मैं 10-12 दिन, क्योंकि रेडियो गाना सुबह सुबह मैंने वहां पर लगाया तो आपके भजन वगैरह आ रहे थे, भजन बड़े अच्छे लगे। फिर मैंने फिर शाम को लगाया तो बढ़िया गाने भी कर रहे थे, तो लगातार मैं सुन भी रहा हूँ और ट्राई भी कर रहा हूँ। अब आपकी ऐप भी डाउनलोड कर लिया मैंने।
0: चलिए धन्यवाद, इस बात पर एंजॉय कीजिए गाने को।
1: बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई सर। ओके थैंक यू।

0: बिल्कुल दिलवाले मर जाते हैं, इसीलिए तो भाई सभी कोई आपके पीछे पड़े रहते हैं। फिलहाल मोहन वाले जी लिखते हैं कि शानदार गाना चल रहा है, मजा आ रहा है सुन सुन के। और बबीता जी लिखते हैं कि नमस्ते अमन सर जी, मैं और भाई साहब ने गाने में शामिल किया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: अरे अमन सर जी धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, हमारा चार भाई का फरमाइश अपने प्रोग्राम में जगह दे दिए, अशोक देशमुख जी और सैयदीन जी, आत्माराम पाटिल जी और हम चारों का गाना फरमाइश में शामिल कर दिए, थैंक यू।
0: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे अशोक देशमुख जी का गाना सुनते हैं।
2: धन्यवाद अमन सर, आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा गीत सुनकर सभी दोस्तों ने फीडबैक दिया, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं। मैं निम्बाड़ा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे मीना कुमारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और आज बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। और यहाँ पे यानी कि हमारे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये घोड़ेदार लहंगा भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, और क्या करें बीच में फोन आ गया था ना, नहीं तो मैं गाने को पूरा बजाने वाला था। और यहाँ पे यानी कि प्रियंका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है जी, बिल्कुल। और रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा गाना मुझे बहुत पसंद आया है। और साहेब हुसैन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और एमडी फैज जी लिखते हैं कि वाह क्या बेहतरीन नगमा है, दिल खुश हो गया है। गजानंद जी लिखते हैं कि मुखड़ा चांद का टुकड़ा वाला गाना और गोटेदार लहंगा वाला भी गाना, और अशोक देशमुख जी की पूरे ग्रुप की फरमाइश भी बहुत अच्छी लगी, धन्यवाद देते हैं। संध्या पटेल जी लिखते हैं कि अमेजिंग सॉन्ग है। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि ये भोला जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे तीन दोस्तों की है, मोहन ने मारे और हमारे ये राजमन हिंदाले और मंगेश देशमुख जी, सुनना चाहते हैं पटाया पटाया एक लड़की को पटाया।

0: वेलकम बैक रेडियो ओडिशा जो दीवाना बना दे। और यहाँ पे ये प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही सुपर पसंद है, थैंक यू सो मच। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग चल रहा है। और गजानंद जी लिखते हैं दोस्त मोहन निवारे मंगेश देशमुख जी राजमल हिवराली जी के पसंद बेहतरीन लगी है, धन्यवाद देते हैं। रणवीर सिंह जेठाराज जी लिखते हैं कि पटाया लड़की को पटाया गाना अच्छा लगा मुझे। और सैयद यूनुस जी आपके लिए एक मैसेज है, आप ये बताइए कि आप ओल्ड यानी कि जानना से हैं या न्यू जानना से हैं, ज़रूर बताइएगा मुझे अगर आप सुन रहे हैं तो। और मोहन निवारे जी लिखते हैं कि अमर सर जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको मेरा गाना प्ले करने के लिए। और जुड़ चुके हैं हमसे यानी कि पीयूष कुमार मिश्रा जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार प्रोग्राम चल रहा है, एकदम झक्कास। मेरे यहाँ कोलकाता में तो बहुत बारिश हो रही है, ओके। और यहाँ भी मेरे यहाँ भी बारिश हो रही है बिहार में। और ओके, और हमारे एमडी फैज लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं और सुपर हिट पसंद के लिए मज़ा आ गया सुन के। इसी बात पर अगला जो डिमांड है मुझे मीना जी का दिख रहा है, और ये मीना जी का आ चुकी यानी कि काजोल का जन्मदिन है, और ये सुनना चाहती हैं अजनबी मुझको इतना बता दिल मेरा क्यों परेशान है। बिल्कुल आपका दिल इसलिए परेशान है क्योंकि इस गाने में कुछ यानी बातें बताई गई है, आप उसको ध्यान से सुनिए। और वैसे जब किसी को प्यार हो जाता है ना तो थोड़ा सा दिल परेशान होने लगता है। एंजॉय द ट्रैक।
1: पता है शेखर,
0: क्या
1: इंसान को तकलीफ कब होती है?
0: तो बता दो कब होती है।
1: जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता।
0: अच्छा।
1: इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
0: अच्छा।
2: बस
0: हार गई।
2: अपनी आंखें बंद करो संजना, बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

वेलकम बैक रेडियो और स्टार जो दीवाना बना दिया हमने फैच लिखते कि वाह बिल्कुल बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और मीना जी लिखते हैं थैंक यू सो मच, आपने मेरा गलत प्ले कर दिया है। ओके और शिल्पा बहन जी लिखते कि यानी प्यार तो होना था, ये गाना मेरा फेवरेट है, बहुत बहुत बढ़िया है, थैंक यू सो मच। और रवि जी लिखते हैं कि आज मत नहीं टेंशन भाई आदिंग भाई। और आमना जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। ओके ओके ओके। और साथ ही साथ यहाँ पे गजानन जी लिखते हैं कि आज नवी मुझको इतना बता, शानदार गाना सुनकर मजा आ गया, धन्यवाद देते हैं उनको। और सुनील कुमार जी लिखते हैं कि अमन जी मैं भी प्रोग्राम से जुड़ चुका हूँ, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। मीना जी लिखते हैं वाह क्या खूबसूरत गाना है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। इसी बात पर अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ वो सुनीता गोप जी का, और सुनीता गोप जी सुनना चाहती हैं ये वाला गाना, एंजॉय करें।

बिल्कुल बहुत प्यारा गाना भी बा। और यहाँ पे सुनीता गोपी लिखने के बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी हमारा गाना प्ले करे खातिर। और मंगेश देशमुख जी लिखते हैं कि हम भी यहाँ पे काम करते करते प्रोग्राम सुन रहे हैं और हमारी भी फरमाइश को प्ले करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद है। और गजानंद सरकार जी लिखते हैं कि सुनीता गोप जी की डिमांड मुझे बहुत पसंद आई। राजेश गौतम जी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और लिखते हैं कि भोजपुरी ने गीत सुन के तो मजा ही आ गया सुन के। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ हमारे यानी कि प्रमोद कुमार जी का आगरा वाले, सुनते हैं इनके गाने को, सभी को डेडिकेट करना चाहते हैं।

और इसीलिए मैं कहूँगा कि तेरी खामोशी भी मुझसे बातें कर जाती है, कि तेरी खामोशी भी मुझसे बातें कर जाती है, मेरी हर तन्हाई को राहत दे जाती है।

0: देते हैं उनको इस गाने के लिए। और कुंता बेनर्जी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है दिल्ली से। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: आरजे अमर सर जी, प्रमोद कुमार जी अपने गाने में शामिल किए हैं, और सभी भाई अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं जी,
0: वेलकम जी। और यहाँ पे राजेश गौतम के लिए लिखते हैं कि वाह क्या गाना है, एकदम मस्त, मजा आ गया सुन के। और यहाँ पे काजल झक्का जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और यानी कि पीयूष कुमार यानी मिश्रा जी लिखते हैं कि वह क्या बात है। इसी बात पर यानी प्रिया मिश्रा जी का एक गाना है, जी हाल मस्ती सुनना चाहती हैं, सुनवा दिया, एंजॉय दैट प्ले, ये खुद सुनना चाहती है ये गाना, लेकिन हम भी सुन रहे हैं, कोई बात नहीं ना है।

0: दिल है।
1: वेलकम बैक फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं और मीना जी लिखते हैं वाह वाह मेरा फेवरेट गाना सुनाने के लिए थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि जिहाल मस्ती वाला गाना मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है, मुझे बहुत पसंद है। ओके और कोई शक ना ना कोई शक नहीं है जी। और लिखते हैं गजानन सरकार जी के जिहाल मस्ती मुकुम बनर्जी वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद। प्रमोद कुमार लिखते हैं वाह क्या गाना है, मजा के सुन के इस गाने को। और सुनीता गोप जी लिखती है कि मेरा गाना है अच्छा, ठीक है एक गाने के बाद मैं आपके गाने को प्ले करूंगा। और कुंता बेले लिखते हैं कि बहुत बहुत खूबसूरत डिमांड है, थैंक यू सो मच। राजेश गौतम जी लिखते हैं कि सर जी बेहतरीन फरमाइश करता को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और रवि जी लिखते हैं वाह अमन जी मजा के गाने सुनकर। इसी बात पर अगला जो डिमांड है गोपाल यानी कि गोपाल जी का है, गोपाल यानी के पटीदार जी नाम है इनका, और सुनना चाहते हैं आके तेरी बाहों में। इंजॉय द ट्रैक।

0: काम लगे सिंदूरी, ओहो, और बहुत ही प्यारा गाना है, दिल को छूने वाला गाना है। लेकिन अगला जो डिमांड है हमारी आज की जो यानी विनर बनी हुई है सुनीता गोप जी, वो सुनना चाहती है आंख से आंख मिलके जे चार,
1: आंख से आंख मिलके जे चार हो गई।

बिल्कुल सच माना जिंदगिया तुहार वेल। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ये मतलब इस गाने बहुत एक्सीलेंट है और सिंगर की आवाज़ भी बहुत ही बढ़िया है जी। बिल्कुल इससे पहले वाले गाने के बारे में आप कह रही हैं शायद। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी बहुत ही शानदार डिमांड है। और राजेश गौतम जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है, अमन सर जी दिल से धन्यवाद देते हैं। और बाबूलाल अंजना जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका। और गजानंद जी लिखते हैं कि आँख से मिलकर चार हो गए, सुरेश वाडकर अलका याग्निक की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला है, मजा आ गया सुन के। इसी बात पर अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो शिल्पा बेन जी का। और शिल्पा बेन

वेलकम बैक। और नंदलाल जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना, सुरेश वाड़का हल्का याग्निक की आवाज में बहुत ही पसंद आ गया, मजा आ गया सुन के एकदम। और शिल्पा बहन लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन जी मेरा रिक्वेस्ट सुनाने के लिए। और सुनीता गोपी जी लिखते हैं अमन जी फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और गजानंद जी लिखते हैं कि शिल्पा जी की पसंद बहुत ही बेहतरीन लगी है। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो हमारे आर के रवि जी का है। और रवि जी सुनना चाहते हैं मेरा बहुत ही फेवरेट गाना तेरे लिए। इंजॉय द ट्रैक।

बिल्कुल चाहत के दिए। इसी बात पे अगला डिमांड भी है आरती तिवारी जी का है, मैं सुनवाता हूँ और इसके बाद अब मैं फीडबैक शामिल करूंगा। लेकिन ये भी इन्हीं के इसी फिल्म का गाना है, ये हम आ गए हैं।

0: बहुत बहुत आपका वेलकम है रेडियो हॉटस्टार के इस प्रोग्राम में। जी आपका शुभ नाम?
1: रणवीर सिंह जेठालाल जी, मुरादाबाद यूपी से।
0: जी बहुत बहुत वेलकम है रणवीर सिंह जेठालाल जी, और कैसे हैं?
1: बढ़िया साहब, आप सुनाइए सर।
0: अरे हम तो एकदम झकास बिंदास फर्स्ट क्लास मजे में चकाचक ग्रांटी के साथ।
1: हमारे तरफ आपके आपके गाने सुनकर हमारे तरफ मौसम बहुत सुहाना हो गया सर।
0: अच्छा जी, अच्छी बात है ना। तो बताइए इस बात पर अब क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: जी हम सुनना पसंद करेंगे बेवफा सनम का गीत है तू नहीं तो तेरी याद सही यादों के सारे जी लेंगे, सोनू निगम जी की आवाज है।
0: तू नहीं तो तेरी
1: याद सही यादों के सहारे अमन जी का सारे जी लेंगे।
0: अमन जी नहीं,
1: अमन जी की यादों के सारे।
0: क्या बात है, लेकिन बहुत अच्छा गाना है ना।
1: जी जी जी
0: okay,
1: आपको पसंद आना चाहिए सर और सभी सुनने वालों को।
0: लेकिन ये तो सैड गाना है, मुझे सैड गाने पसंद नहीं आते, पता नहीं क्यों। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके गाने को प्ले करूंगा, ठीक है?
1: ओके,
0: लेकिन इस गाने को, इस गाने को थोड़ा सा सुनने के बाद है ना।
1: हाँ सही है,
0: ओके
1: तो लाइन पर हूँ।
0: ओके आप फोन कट कर दीजिए।
1: ये लाइन पर हूँ, लाइन काट दूँ?
0: अरे फोन कट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम।
1: ओके ओके सर, ओके नमस्कार।

अब लगता है मुझे अभी धमाल मचाना पड़ेगा, क्योंकि भाई सैड गाना मुझे कोई बात नहीं। यहाँ पे कुंता जी लिखते हैं ब्यूटीफुल लाजवाब सॉन्ग के लिए, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे रवि जी लिखते हैं कि आपके साथ ने हर पल को खास बना दिया, आपके साथ ने हर पल को खास बना दिया, मेरी छोटी सी दुनिया को गुलजार बना दिया, दिल से अदा करते हैं हम शुक्रिया आपका जिसने मेरी पसंद का गाना बजा दिया। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि वाह ये हम आ गए कहाँ, ऑसम डिमांड है। कपूर चंद जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग चल रहा है। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया लगा है और सभी गाने बहुत अच्छे लगे हैं, ओके थैंक यू। और आरती तिवारी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरा गाना प्ले करने के लिए। और गजानंद जी लिखते हैं कि ये तू नहीं तो तेरी याद सही, इसी बात पे इस्माइल खान जी और 1 2 का 4 ऑन द फ्लोर इंजॉय कीजिए।

0: क्यों, इस गाने को सुनकर मजा आया ना? इसी बात से एक और गाना सुनिए, निक्की जी की पसंद का, और एंजॉय द ट्रैक गफूर।
1: वो सब कुछ जो एक विलन के पास होता है,
2: बैड मैन के पास होता है।
3: गुड
1: ब्यूटी।
4: एक चीज भूल गए,
5: आई कम सॉ।

और रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, और हमारे ये माखन प्रजापति जी लिखते हैं कि गाना सुनकर तो आनंद ही आ गया है, और फैज जी लिखते हैं जी एकदम जबरदस्त गाना है, दिल खुश हो गया है, और यहाँ पर निक्की जी लिखते हैं कि बहुत बहुत थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। इसी बात पर अगला जो डिमांड प्ले करने वाला हूँ, जी हाँ मैं हूँ खलनायक, सुनना चाहते हैं नीलेश विरोकार जी।

दोस्तों, यानी कल के जो थीम के शब्द है वो है हुस्न, रूप, जिया, अदा और पलकें, जुल्फें, चेहरा, आंखें, ख्वाब, सपना, ये कल के थीम शब्द है।

0: जी जी बहुत ही देर हो चुकी है, अब हम क्या ही कर सकते हैं, अब मुझे जाने का समय हो चुका है और बस मैं थोड़ी देर और हूँ आप सबके साथ। और मंगेश देशमुख जी लिखते हैं सभी दोस्तों की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है आज, और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि दोस्त नीलेश वीरकार जी की भी पसंद शानदार लगी है, और एमडी फैज जी लिखते हैं कि जी लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच जनाब, और राजेश गौतम जी लिखते हैं कि देर ना हो जाए जबरदस्त सॉन्ग के लिए धन्यवाद देते हैं, और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि देर ना हो जाए बहुत ही बढ़िया गाना सुनने को मिला, मजा आ गया, मुझे बहुत पसंद है ये गाना, और ओके, और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए हीना फिल्म का लाजवाब गाना मजा आ गया सुन के, अर्षद जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, और ये फीडबैक
1: जी अमन सर जी
0: जी
1: लाख लाख धन्यवाद सर हमारा फेवरेट गाना सुनाने के लिए।
0: अच्छा
1: जो भाई पसंद किए उनको भी धन्यवाद देते हैं।
0: अर्षद जी
1: ये मेरा फेवरेट गाना है।
0: अच्छा
1: हम कोई ब्याह शादी में जाने से भी बाजा वाला से ये गाना बजवा के सुनते हैं, हमारे लिए बहुत फेवरेट गाना है।
0: क्या बात,
1: थैंक यू सर धन्यवाद।
0: और यहाँ पे मीना जी लिखते वाह क्या बात है बहुत ही शानदार गाना, इसी बात पर अगला जो डिमांड प्ले करने वाला हूँ मिसाल अंगद जी का सुन लेता हूँ क्या क्या सुनवाने वाले हैं।
2: हेलो अमन सर,
0: बोलिए बोलिए।
2: मैं मिसाल अंगद बीड महाराष्ट्र से आपके लाइव कार्यक्रम में एक गीत भेज रहा हूँ।
0: अच्छा।
2: अमन सर जी आज बॉलीवुड मस्ती में मुझे होते होते प्यार हो गया इस फिल्म का गाना सुनने का है, और जो काजल पर फिल्माया हुआ गाना है और गाने के बोल है लड्डू मोती चूर के, ये गाना मैं सुनवाना चाहता हूँ सभी दोस्तों को अमन सर जी, और बहुत दिनों के बाद अमन सर जी मैंने गाना आपको भेजा है, तो अमन सर जी सबसे पहले इस गाने में आपको मैं डेडिकेट करूँगा, फिर आपकी सुंदरता की मूर्त इन दोनों के लिए भी मैं गाना स्पेशली डेडिकेट करूँगा, फिर हमारे आदरणीय गजानन सालोकार जी सर्वेश भगत जी मोहन नेवारे जी हीरामन खिराड़ी जी आरजे वंशिका जी और जितने भी मेरे रेडियो हॉटस्टार के सभी दोस्त है इन सभी दोस्तों के लिए मैं ये गाना डेडिकेट करता हूँ, तो अमन सर जी गाना सुनवा दो, धन्यवाद।

0: और इसी बात में एक ये भी गाना सुनते हैं।
1: अमन भैया नमस्कार, मैं सुनील कुमार बांका बिहार से, और आज के कार्यक्रम में मैं एक भोजपुरी गाना सुनना चाहूँगा। फिल्म का नाम हमार भौजी और गाने के बोल है तोके दुल्हा मिली काना सूरत से जनाना और सगरी उमरिया तू आह भरबा।
0: अच्छा,
1: ये गाना पहले तो आपको डेडिकेट है, आपकी सुंदरता की मूरत को, MS परमार जी को, वंशिका जी को, आकांक्षा जी को, सोनू गौतम, प्रिंस पासवान, सतीश शर्मा जी, परवेज अहमद जी, मुक्तिनाथ जी, अरुण मंडल जी, नेकलस जी, रेडियो हॉट स्टार सुनने वाले सभी दोस्तों को
0: एंजॉय कीजिए।

0: ओके, एक दो गाने की और मैं भाई लेने वाला हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे परेशान कर देंगे नहीं प्ले करूंगा तो।
1: अरे अमन शाह जी, मिसाल अंगद जी अपने गाने में शामिल किए, उनको धन्यवाद देते हैं जी।
0: ओके जी, और यहाँ पे कुंता भी नहीं लिखते हैं कि बहुत ही सुपर फरमाइशेस भाई। सुनील कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बबीता जी लिखते हैं कि नमस्ते अमन शाह जी, और ओहो हो आपका भी छूट रहा है, सॉरी। और एमडी फैज जी लिखते हैं कि एकदम बवाल है जनाब ये गाना सुनकर। राजेश गौतम जी, हम भी लाइन में, अच्छा हो भाई, गौर में क्या करूं यार, किसका किसका मैं प्ले करूं यार, ये फीडबैक सुनते हैं।
2: अमन भैया नमस्कार, मैं सुनील कुमार बांका बिहार से, और आपने मेरी पसंद का गाना प्ले किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दोस्तों का फीडबैक देने के लिए शुक्रिया।
0: ओके जी, धन्यवाद आपका भी। और कपूरचंद जी लिखते हैं थैंक यू सो मच, और गजानंद जी लिखते हैं कि भाई कपूरचंद जी की पसंद, मिसाल अंगद जी के पसंद सभी बहुत अच्छे लगे हैं, और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगा। इसी बात पर भाई राजेश गौतम जी, चलिए सुनवाते हैं आपके पसंद का भी गाना, थोड़ा सा सुन लीजिए, ज़्यादा नहीं प्ले कर पाऊंगा, इन्जॉय द ट्रैक।

वेलकम बैक। और यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं राजेश गौतम जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी, शानदार डिमांड। गजानंद जी लिखते हैं कि राजेश गौतम जी की डिमांड बहुत ही शानदार लगी है। राजेश गौतम जी लिखते हैं कि सॉन्ग बजाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं। और आज मैं अपने फैमिली के साथ आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। अच्छा, गांव में क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल कुमार जी जुड़ चुके हैं हरिद्वार से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। इसी बात पर आखिरी गाना प्ले करूंगा गजानंद जी का, उसके बाद से हम यानी कि आज के विनर जी को कॉल लगाने वाले हैं। तो गजानंद जी, ये पूरा ग्रुप एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

और एक आरती तिवारी जी का लाइन है कि टूट गई दिल पर अरमान वही है, दूर है फिर भी इन प्यार वही है। हम जानते हैं कि हम मिल नहीं पाएंगे कभी, हम जानते हैं कि हम मिल नहीं पाएंगे कभी, मगर इन आंखों में इंतजार वही है।

0: आज के विनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई हो टॉप लीडर बोर्ड में। कैसे हैं प्रमोद जी?
1: नमस्ते सर, बढ़िया
0: हूँ
1: सर।
0: नमस्ते नमस्ते। और क्या हाल है आपका?
1: बढ़िया है सर, बरसात हो रही है, मजा आ रहा है बरसात।
0: तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: कहता है ये सफर, बड़ा दिन का सॉन्ग है सर
0: जी।
1: मूवी का नाम बड़ा दिन, मूवी का नाम बड़ा दिन। कहता है ये सफर,
0: कहता है ये सफर,
1: सफर।
0: अच्छा, फ्रॉम
1: बड़ा दिन।
0: अच्छा ओके, मैं देखता हूँ उसको। मिल तो गया आपका गाना मुझे, ठीक है मैं सुनाऊंगा इस गाने को और एंजॉय कीजिए। ओके धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।
0: वेलकम जी। ओके, तो इसी गाने के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिलहाल यानी कि चैट बॉक्स में, मतलब आरजे आकांक्षा जी का जो प्रोग्राम होगा मैं उसमें यानी कि चैट बॉक्स में धमाल मचाते रहूंगा आप सबके साथ। लेकिन मैं आऊंगा कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर।

0: क्या हुआ?
1: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
0: अच्छा जी,
1: एक बहाना बन गया अच्छा।
0: अच्छा,

कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे।

दिन बीवी बन गई भोली, कुंडी खोली हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं, ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी

बाला देवी, माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: हाँ तो नैनो में
1: बिंदिया है,
0: माथे पे
1: बिंदिया है,
0: तो बालों में
1: गजरा है,
0: आँखों में
1: गजरा है।
0: ओहो।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

वो आ गया।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: अरे मैं क्या एक भूचाल हूँ?
1: भूचाल भी और एक नाजुक ख्याल भी, ले लीजिए।
0: मेरे लिए?
1: जी, आपकी नजर।

0: जानी।
1: ये बात है, कहीं नजर न लगा दीजिए।
0: अजी हम तो आपकी नजर के मारे हुए हैं।
1: तो फिर हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं?